0: موديها اكم ميجا هاتس تبقى هي فعلا.
1: ए मावे सुट्टा लाफिंग
2: आहार में सुट्टा लाफिंग
3: ए लिस्ट को मावे सीमना ला
4: अमिल्ल फैसा आंदा गें अमिल्ल हाशिंगडा गेल्लुन दिरुमकी किहा मोय कमे ए में मावे सुट्टा लाफिंग
5: दुम फाई आहार में गे हाथुरे दुम फतु के इस्तेमाल कुरुम गे साबुन दिमावा सिही मसल तोगा आहार को हम मिलियन वुरे किना मीहु मरवा कमा ताफास हिसाब तकुन दक्का फस नुजेही अवह दुम्फतु के इस्तियो माल कुरूं हुट्टा लमा हिंगा।
6: दिवे ही एफएम, नुवदी है एकम मेगाहर्ट्स। दिवे हिंगे मुनिफु है फिल्वा देनुमुगा अबदुएस।
7: मी अहमद आमिर,

ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं। ये मैं नहीं, ये वो दोनों कहते थे, और कहते क्या थे, करते थे, और ऐसा करते थे जैसा ना किसी ने किया और ना शायद कोई कर पाएगा।

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम अलैकुम नो देखे मैं गौर दिवे हे फेमर ट्रेन खुल बैंत बे मैं हा बे फुना वरंग फायर वक्त खुल के दमो मैं गड़ी की खबर आको खुले दाना खबर आको बदल खुले अरम फातिमा वहीदा मैं गड़ी की खबर तो गे तेरेगा अब्दुल अजीज मोहम्मद वहारुमा गुल के रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज तौजी आविदार वेचे अब्दुल अजीज मोहम्मद वहारुमा गुल के सोशल मीडिया का हिस्सा कुरवी पोस्ट का रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज वनी फॉर्मल सिटी फुनाडो रियाज हुस्नी हीना के अलमरहूम अब्दुल अजीज के आयला तौजियादा नवाफा अमरुफान के पोस्ट का अब्दुल अजीज मोहम्मद की खिदमत तौलीमी आयला का निसप वडागनवा हुनरवेरी कुलदान पेफले का फाहकुरा वाफावे वकीन खास को नवरसते का फस्तुल होगे अहरतो का अडू नूरानी स्कूल का इंग्रेज बहुगे टीचर के गुद का एता कुजा का उंगर नादे वुमा एगे फहुं कांडुत तुर फतुर के दायरा का तिरिस अहर बुरे गिन दो हुकुरे भी मसेह के फाहकुर वाफावे आदि एबे फ्लाय की कागो बोट फार के कैप्टन के गुद का दुनिया के एक काम तक दतुर कुरे वुमका दिगु मुद्दते वंदे उलुवे बेफले का फाहग कुरे भी राज्य के उतरुन देखुना बलाल कम का वे स्काउट हरकत की मि जजीरा रत्तव के मिद का ज्योग्राफी गोतुं और ना दुरुमें कैर को ए बैवंत कम के वर्गदा फालम को दिवे जुआनु गुलवादे बारे कम रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज विदाल वेचे रईस मिहे विदाल वी राज्य का स्काउट हर कै फिशुनुता हदिहा हर फुरुम के मुनासबत का फुनवी तहनिया के खिताब का रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज वनी राज्य का रस्मि को स्काउट हर कैफे सुनता मियादु हैदिया हर फुरम के मुनासबत का राज्य का स्काउट हर कै तरक्की कुरवा कोरिया गेंदेवमा मसे के पुलु कुरवी आदि मिहार वेस ए मसे के पुलु कुरवम गेंदवा ए मिहा बे फुलुंगे मसे के पुलु तोगे आकु वजन कुरवा ए बे फुलना शुक्र अदा कुरवा फा गेंगो कुत्तका मस्तुअतगतीगे वबा हुट्टुम सरुकारुं एकशालुवाफावा हरुदना फियवलतोगे हेयो नतीजा फेनमुंदाकम रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज विदालवेजे पीएसएम न्यूज के नेशन चैट प्रोग्राम का वाहक फुरदाकामुं रईस जमहूरिया विदालवी राज्य मस्तुअतगती एतेरेवुं हुट्टुमका बोडती कामयाबीतकें हासिल कुरवेमुंदाकम एगोतु मीडिया देहरा

0: मी अवॉर्ड हवा कुर्मा आउंड ओवर मा मुनासो बेफो को आउंड ए बफेने यह फ्लैग दरिया कल दिबेन एम अवॉर्ड उफलकी मम्मा नोने बाप्पा गया थू अवॉर्ड हासिल कुरों करने गे आउंड हमा मिथांगा अश्वा के मम्मा इन्ना वनी को मी अवॉर्ड हवा कुरा का हम आउंड कर नुकरे एंड मम्मा मी स्टेज ना आउंड ऐ दिनी हमा अलगे मामा के अथुंग अलगे मामे या बेवोड़ एरो
1: आज वारं उफा वेरी मंजरे मैं वंत कम के लोबिंग खुलुनु फुरिगे वा मंजरे मैं वंत कम के लोएपा म्यूजिक अनाउंस में कौन ना लोए बा बोली लाम ही करता मर्दर मेरा तो बेफुन अति फेंड वाला है लोए
2: मर्द तारी ही मर्द बोड़ा मरहबा अश्वा
3: අද එමෙ මග්බූල් ෆිරිහෙන් ලව කියුන්තිරයක් ඇවෝඩ් ඉබ්‍රාහිම් අලී සයිද් කාමියාබ් කුරි මිහිතුගේ රාණි කියයිදින් දක්ලියෝ අදි ලෝබින් කියයිදින් ෂම්මුන් මොහම්මද වාදකොග්ගෙ
2: අදි වේ එෆ්එම් ගේ එහුන් තෙරිගේ මෙදුග එමෙ මග්බූල් ලව ෆිරිහෙන් මෙවවරු ඉබ්‍රාහිම් සයිද් අලී
4: මේ ඇවෝඩ් එක ඇස්ලෝ අරුණ අපිස් වර හාස ඇවෝඩ් එයි මෙහා තන ලව එක ෆිල්ම් එක ලව එකන් අලුගුණු එමෙ මසක්කේ කුරි එල් ලව මෙවවරු මේ अने वर बैवर फंडा बेणु को बेंदेंग अड़गण बेणु गोतक मिलवा मिराग हदम नहु अड़गण वर मे स्पेस दिव्वी मे राघु हदंग हेमीम नहु रबुड़ शुकुरिया अड़गण दीत्र बहट बदवे सम वर शुकुर वर थैंक यू वर बड़ा थैंक
1: यू रिक्वेस्ट तीबे मीबे कड़ो लवेगे तंकोले
3: वर कुरियर एहुन तेनिगे मेदुगा एमे मगबूल लवेकं होवणी डार्क रेन एंटरटेनमेंट के लाल बिबी मिलावा किया फवनी टॉय आदि मरियम अश्फा मिलावा या वाद कुरी रेवा आदि मीवावरु मितिलावा मी एवोर्ड ता होमगा गेंगुड़ फवनी इंसाफेरी आदि हाम कंबुड़ मिंगड़ तके एगो तुं एहुं तेरिंग एम्मे की नया रिक्वेस्ट कुरी लावा तका एम्मे मकबूल फाड़नानु हुआ फवनी सीधा दिवे ही एफएम के ओढ़ने आता फासी साब तका पलागें एगो तुं एहुं तेरिंग एम्मे की नया रिक्वेस्ट कुरी लावा तका एम्मे मकबूल फाड़नानु हुआ फवनी सीधा दिवे ही एफएम के ओढ़ने आता फासी साब तका पलागें अदि एहेनी हेन हुरिया फण्णी दायरा तकुम वणता हुआ फवणी तीम फंडियारुंगे मच्च एकुलेवे फण्णी पेनलकुं देव्वी फंसास इनसत मार्क्स अदि आमो एहुन तेरिन दीफवा फंसास इनसत वोट एकोगेन लिबुनु जुमला नतीजाय पदागें

0: दिवेही एफएम, दिवेही नेट।
1: नोदिया एकेम मेगाहर्ट्ज़, दिवेही एफएम।